गाना गाऊं तो क्या चल कर बनाया गला कथे थी इल्जाम तमाशा आनंद ही गजेरा बना